0: 99.4 रेडियो था संचार स्टूडियो टाइम
1: इट्स 8 पीएम हिजो जस्तो आज छैन आज जस्तो भोलि रहने छैन समय गतिशील छ जब समय बोल्न थाल्छ संसार सुन्न थाल्छ थाह संचार नेटवर्कमा यो हो नेपाल परिवेश समयको आवाज समय